चर्चा करे अंकार ठाकुर लेखा मंगन हार फेड़े का दुख सहे जियो पाछे किसे पुकार है पियो पियो साधु की जो लेहो ओट तेरे मिठे पाप सब कोट कोट कह रविदास जो जपे नाम तिस जात न जन्म न जोन काम बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पूंछट ऊपर चमक बाल इस कर्म है सो तू ढूंढ खाहे और किस ही के तू मत ही जाहे रहाओ चाकी चाटे चून खाहे चाकी का चित्रा कहाँ ले जाहे चीखे पर तेरी बहुत डीठ मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ कह कबीर भोग भले कीन मत को मारे ईट डेम राग सारग चौप दे महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद अपने ठाकुर की हो चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हो मैं मार न बेरी रहाओ पूरन भरम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे मोहन मोहे में अलिया मन मेरा समझस शब्द बिचारे मन मुखहीन होची मत

सब साची सुरत समानी अकुल निरंजन सिओ मन मान्या बिसरी लाज लुकानी पूर भविख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण अधारा हर के नाम रति सोहागन नानक राम पतारा सारग महला पहला हर बिन क्यों रहिए दुख व्यापै जहवा साधना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाओ जब लग दर्शन परसे प्रीतम तब लग भूख प्यासी दर्शन देखत ही मन मान्या जल रस कमल बिगासी ऊनव कर हर गरजै बरसै कोकिल मोर बैराग्य तरवर बिरख बेअंग बोयंगम घर पिर धन सोहागै कुचल करूप कुनार कुलखनी पिरका सहज न जान्या हरस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समान्या आय न जावै ना दुख पावै ना दुख दर्द शरीरे नानक प्रभ ते सहज सोहेली प्रभ देखत ही मन धीरे सारग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा सतगुर बचन मेरो मन मान्या हर पाए प्राण अधारा रहाओ इन विद हर मिलिये वर का मन तन सोहाग प्यारी जात बर्ण कुल सहसा चुका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने अभिमान ना ताको हिंसा लोभ विसारे सहज रवे वर का मन पिरकी गुरमुख रंग सवारे जारो ऐसी प्रीत कुटंब सनबंदी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा करम बिकारी अंतर रतन पदार्थ हित को दूर है ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम व अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारग महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मिल सत्संगत परम पद पाया आत्म राम रहया परपूर रहाओ सतगुर संत मिले शांत पाइये किलविख दुख काटे सब दूर आत्म जोत पई प्रफुल्लत पुरख निरंजन देखिया हजूर वड्डे भाग सत्संगत पाई हर हर नाम रहया परपूर अठसठ तीरथ मजन किया सत्संगत पग नाए तूर दुर्मत विकार मलिन मत होची हिरदा कुसुद लागा मोहकूर बिन कर्मा क्यों संगत पाइये होमे व्याप रहया मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जियो मागो सत्संगत पग तूर नानक संत मिले हर पाइये जन हर भेटिया राम हजूर सारग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी पव

प्रभगम गोचर रव्याश्रभाई मंथन अलख पारी गुर कृपाल पय तब पाया हृदय अलख लखारी अंतर हर नाम सरब तरनी तर साकत को दूर पया अंकारी तृष्णा जलत न कभू बुझै जुए बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावे गुर किंचत कृपा तारी नानक जिनको नदर पई है तिनकी पैज सवारी सारग महला चौथा हर हर अमृत नाम देहो प्यारे जिन ऊपर गुरमुख मन मान्या तिनके काज सवारे रहाओ जो जन दीन पए गुर आगे तिनके दुख निवारे अन दिन भक्त करहे गुर आगे गुर के शब्द सवारे हृदय नाम अमृत रस नसना रस गाव है रस बीचारे गुर प्रसाद अमृत रस चीन्या ओय पाव है मोख द्वारे सात गुर पुरख अचल अचला मत जिस दृढ़ता नाम अधारे तिस आगे जियो देवो अपना हा सतगुर कै बलहारे मन मुख भ्रम दूजे पाए लागे अंतर ज्ञान गुबारे सतगुर दाता नजर न आवे ना उरवार न पारे सर्वे घट घट रहा स्वामी सर्व कला कल तारे नानक दासन दास कहत है कर कृपा लेहो उबारे सारग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाए जो खिच करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाए रहाओ गोविंद प्रीत लगी अति मीठी अवर विसर सब जाए अन दिन रह सपया मन मान्या ज्योति ज्योत मिलाए जब गुण गाए तब ही मन तृप्त है शांत वसे मन आए गुर कृपाल पए तब पाया हर चरनी चितलाए मत प्रगास पई हर त्याया ज्ञान तत् लिव लाए अंतर ज्योत प्रगति मन मान्या हर सहज समाद लगाए हृदय कपट नित कपट कमावे मुखो हर हर सुनाए अंतर लोभ महागुबारा तुह कूटे दुख पाए अंतर लोभ महागुबारा तुह कूटे दुख खाए जब सो प्रसन्न पाए प्रभ मेरे गुरमुख परचा लाए नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए सारग महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी मेरे हीरे सतगुर प्रीत लगाई मन हर हर कथा सुखानी रहाओ दीन दयाल होवो जन ऊपर जन देवो अकथ कहानी संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी हर के

किछ करना सुकर रहया। सो दर राग आसा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा के हा सो घर के हा, जित बह सर्व संभाले।

सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै की ताया पुणा ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा हुए कीमत पाए न कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया कर्म मिलै ना ही ठाकर हाईया

की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकर आखण पाही, वड्डा न हुए घाट न जाए।

खसम विसारह तीकम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई

तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निदानु दस अष्ट सिदानु ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सुपुरख एको अंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हु संतोह जी

किसी जो तू देहे सोई हो पाई राव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करे तिन नाम रतन पाया।

तुद बिन दूजा अवर न कोई, तू कर कर वेखह जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा, ना हो जति सती नहीं पड़िया।

सोई गुरु समझे हो हमारा, नमस्कार किस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

शिव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम।

सबकाला, दुष्ट अरिष्ट तरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट चाह चव सकै न कोई।

मति न मानियो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुपीत कह हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी करो मैं न कहूँ सब तो ही।

ठाकुर का पयो जिसका सब सदार। जेको खावे जेको पुंचे किसका हुए उदारू। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रखुर तारू। तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसार।

सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरिया। पौड़ी जिथे तू समरथ, जिथे कुए नाहि, उथे तेरी रख अग्नि उधर माहि। सुनकै जमके दूत, नाई तेरे चढ़ जाहे। पौजल विखम सगाहू, गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास, अमृत से खाहे।

श्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाउ सतगुर सेती रतिया दरगह पाई ऐठाऊ कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे जग मह।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

वेद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देव काटे जन की बंदा। दूसरा शब्द आप जिया ने सरवण कीता परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। सचे पातशाह जी कह रहे ने उना दे दुख दौड़ जांदे ने, डेरा चुक के दौड़ना पैंदा। कई रोग दुख ऐसे लग जाते हैं जिन्ना चिर दवाई का मेडिसिन का असर है शरीर नूं आराम है, पर जिन्ना चिर दवाई का असर खत्म होया पीड़ा फिर शुरू हो गई। पर जिन्ना ते महाराज निहाल हो जाए, अरदास सुनी जाए, सेवा प्रवान हो जाए, फिर कहते ने परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा बनना। करोड़ा ही ऐसे रब दे प्यारे ने जिन्होंने महाराज के दर तो हर तरह का सुख माणिया है, फिर उन्होंने भावना बन जाती है। कर मिनत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ, धन गुरु रामदास जी पातशाह मेरा करन। ऐसी भावना थोड़ी साड़ी भी बन जाए, कीर्तन च बेअंत भुला हो जांदियां ने। आप जी बख्शन योग हो। आओ बड़े प्यार नाल सन्मान योग ज्ञानी नवनीत सिंह जी, वो आप जी के सन्मुख गुरमत विचारा निहाल करनगे। पुंचुक दिखी मां फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।

लिखा छूट अलिख है छूट है, हम निर्गुण ले हो उबारी। साधु बख सिंध सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी।

सब सिगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपेओ हट न पति जई। एक गाव है राग परिया राग न पीजई। एक नच नच पूरह ताल भगत न की जई। एक अन्न न खाहे मूरख तिना क्या की जई। तृष्णा हुई बहुत किवै न ती जई। कर्म वध है कैलो

हर भक्ति असनेहे गुरमुख की जय। लाहा नाम संसार अमृत पी जई, हर भक्ति असनेहे गुरमुख की जय। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो शामां दे दीवान दी हाजरी श्रद्धा भावना अदब सहित भर रहे हो, प्यार नाल गुरदेव जी दी अमृत बाणी दा कीर्तन आप जीयां ने। सत्कारयोग भाई साहिब भाई ओंकार सिंह जी उन्हां दे जथे पासों सरवण कीता है। आओ समा होया अमृत बाणी दी कथा दा, जो नितां प्रति धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी मुबारक रसना तों उचारण कीती गई मलार की वार दी आपां विचार कर रहे हां। अज 17वीं पौड़ी अते उस दे नाल दर्ज 2 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता। श्लोक तीसरे गुरुदेव गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दी अमृत रसना तों उचारण कीते गए हन, अते पौड़ी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे श्री मुख तो उचारण कीती गई है। श्लोकां दा सूक्ष्म जा भाव संखेप भाव ही है कि संसार जगत दे अंदर हर सुखमई आनंदमई पदार्थ उदों ही सुख आनंद प्रदान करता है जे उस आनंद नू उस सुख नू मानन दे लई जीव आत्मा प्यारे परमेश्वर दे संग दे नाल है। जा इउं कह लई वी जिस जीव आत्मा नू जिस जीव नू उस कामन रूपी जीव नू परमात्मा रूपी कंत दा मिलाप है, उदी याद है, उस सावन दे महीने तो भाव है कि हर संसार दे सुख विच हर संसार दे आनंद विच आनंदमई रहेगी। जिसनू परमात्मा परमेश्वर दा प्यार नहीं मिलिया उदे आले दुआले भावें किन्नी भी हरियावल क्यों ना होवे, सौण दियां कणियां पैंदियां होण, भावें उह हर पासे पंछी चहचार रहे होण, फुल्लां दा खेड़ा होवे, पर गुरदेव जी कहिंदे ने वाहिगुरु दे नाम तो बिना जिहड़ी जीव आत्मा है उह सावण दे महीने विच वी विछोड़े विच सड़ जांदी है। सौण दे महीने विच अग लगनी गफलता दी निशानी है ना। गुरदेव जी कहिंदे भी इस महीने भाव सब कुछ हुंदिया भी जे वाहिगुरु दा प्यार नहीं तां सब कुछ दुखदाई है। पौड़ी विच गुरदेव पिता महाराज ने कृपा कीती है कि फिर उह परमात्मा उहनूं पाया किवें जाए। बंदा बड़े हठ करदा है, तप करदा है, जप करदा है, रागां नादां दा सहारा लैंदा है, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੱਠ ਨਾਲ, ਨਾ ਜਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਰਾਗ ਨਾਲ, ਨਾ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ।

दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोविंद रूप सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, आप जी के चरण कमला पास अरदास बेनती जोदड़ी अरजोई कोटान कोट शुकर लख लख धनवाद आप जी ने अपने अमृत वेले तो लैके इस वेले तक पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संगतान निहाल किया है। इस वेले आप जी के हजूर कीर्तन सुहेले साहब जी के पाठ हुए, सुखासन की सेवा हुई, बाणी का पाठ करद सुखासन की सेवा करद अनेक ही प्रकार दुलां गलतियां हो गई होनगियां, अनजान बच्चे समझ के बख्श लेना अगो वास्ते शुद्ध से स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन की मत बख्शनी। आप जी के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल बतीत होया, रात्रि आई भाणे अंदर सुख नाल बतीत कराउणा, अमृत वेले दा जागना बख्शना। इस वेले आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं, आप जी अपने आसन से विश्राम करो, समूह संगतां नूं खुशियां बख्शो, अमृत वेले फिर दर्शन दारे बख्शे निखाल करना, अखरवाद घाट पड़िया पुचुक माफ करना, सरबत दे काज रास करने, सही संत प्यारे मेलने, जिना मिले तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिन से भय परम, साध नाम निर्मल ताकी कर्म, सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।

कर्ता पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार

मन रखिए पाऊ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा सुमाई। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा, गुर पार्वती माई।

कायक दाता सो मैं विसर न जाय। तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी। जेते सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई।

अनजाने मन कोई मन ने मार्ग ठाक न पाई मन ने पाथियों पर घट जाए मन ने माग न चले पंथ मन ने धर्म से तीसन बंद ऐसा नाम निरंजन हुई जी को मन जाने मन कोई मन ने पावह मुख द्वार मन ने परवार साधार मन ने तरे तारी गुर सिख मन ने नानक पवह न पिख ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोई पंच प्रवान पंच प्रदान पंचे पावह दर गह मान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान

का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जी को बुझै हुए सचियार तबले ऊपर की तफार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोई लेखा लिख

तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गालवट हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भाव है साई भलीगा। तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है।

लखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुतमा हो ना कोई जा करता सिर ठीको साजी आपे जाने सोई।

कांड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुद नो गावे जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले और किते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भाव है सोई करसी हुक्म न करना जाई।

निंदा संतोख शर्म पद झोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आदनील नादनात जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजै नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चिला वह लिखे या वह भाग आदेश से आदेश आदनील नादनात जुग जुग एक वेश

किते मंडल देश किते सिद्ध बुद्ध नाथ किते किते देवी वेश किते देव दान मुन किते किते रतन समुंद कितिया काणी कितिया बाणी किते पात नरेंद कितिया सुरती सेवक किते नानक अंत अनंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म कांड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर

तिथे खंड मंडल वर पांड जी को कथे तंत नंत तिथे लो लो आकार जीव जी हुक्म तिवे तिवकार विखे विगसे कर विचार नानक कथना करडा सार जत पहारा।

अपेय हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजेय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपांज हैं, अचूज हैं, अचांज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, नरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, असूक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, कुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्य समस्ती निदानी, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नाते, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ती बेपूते, कलंकंग बिना निकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणि, नमो अस्त्रमाणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचिदानंद सत्रंग परणासी, अनुपे अरूपे समस्तो निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा वृद करता, अधो उर्ध अर्धंगा गंगोग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामंग कामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी चंद, जले हैं तले हैं, अपीत हैं अपेय हैं।

नमस्तुंग निर्णाते, नमस्तुंग परमाते, नमस्तुंग गंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्व देशे, नमो सर्व पेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोग रोगे, नमो सुख सुखे, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतंग, नमो सर्व पीतंग, नमो सर्व ज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्व मंत्रंग, नमो सर्व जंत्रंग, नमो सर्व दृश्यंग, नमो सर्व कृष्णंग, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तंग प्रसिजे, कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग परनासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट चंत्व प्रसाद, अमृत कर्मी अमृत धर्मी अकल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे अकल धर्म गलत कर्मं, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता, सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले, रुवाल छंत्व प्रसाद, आद रूपनाद मूरत जौन पुर कपाद, सर्वमान त्रिमान देव पेवा दुदा, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरे, आद गुरुकुदार मूरत अजौनाद अशेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग, जतर तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग, नाम काम बहीन पेख ताम हु न जाहि, सर्व मान सर्वत्र मान सुदय मान सदाहि, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल खेल खेलनंत को फिरे, देव पेव न जा नहीं जे भेद और कते, रूप रंग न जात पासु जानी के जे, तात मात न जात जाकर जन्मरन बहीन, चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन, लोक चौदह के विकै जग जापे जय जा, आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जेह ताप, परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्वरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहत भूत लख अपेश, अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम, आप रूपमी कनुष्टते पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत, अंगहीन भंग नात्मेक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक, सर्व शास्त्र न जानि जे रूप रंग अरेक, परम वेद प्राण जाक है नित भक्त नित, कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि वह चित, मद पार चंत्व प्रसाद, गुणगन उदार महिमा अपार, आसन अपांग उपमा नंग अनुभव प्रकाश, निश्चिन आना साजान बाहु सहन साहु, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंग कालान काल, अनपूतांगा बापांग अत्मित अपार, गुणगन उदार मुनगन प्रणाम, निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड, मित गत अखंड, अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म, सर्व प्रनाड्यंड भाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद, गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निर्णामे अकामे, भुजंग प्रयाचंद, चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता, चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी, चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती, चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले, चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे, चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने, चाचरी छंद, न सत्रै न मित्रै न परमंग न पित्रै न कर्मंग न काय, अजन्मंग जाय, न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै, प्रथिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य, भगवती छंत्व प्रसाद, कथते
ਕਿਆ ਚਿਜ ਦੇ ਸਹਿ ਕਿਆ ਭਿਜ ਪੇ ਸਹਿ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭੰਜ ਭਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿਆ ਦਿਤ ਸੋਕੈ ਕਿਆ ਅਵਧੂਤ ਵਰਣੈ ਕੇ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕੇ ਰਾਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕੇ ਧਰਮੰਗ ਤੁਝਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਖ ਭਰਨੈ ਕੇ ਸਰਬਾ ਭਰਨੈ ਕੇ ਜਗਤੰਗ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕੇ ਛਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕੇ ਵਰਮੰਗ ਸਰੂਪੈ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਅਨੂਪੈ ਕਿਆਤ ਕਿਆਦ ਅਦੇਵੈ ਕਿਆਪ ਅਭੇਵੈ ਕੇ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨੈ ਕੇ ਕਹਿ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇਐ ਵੈ ਕੇ ਗੈ ਬੁਲ ਗੈ ਵੈ ਕੇ ਫੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕੇ ਸਾਹਨ ਸਾਹਿ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰਗ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਗਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਿਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਸਾਜੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਲੀਨੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਾਹੋ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪਾਲੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਸੋਕੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੋਖੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਤ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਦਿਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਵਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਵੰ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਤੁਮਾਮੁਲ ਰਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੀਸਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਕਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜ਼ਮੀਨੁਲ ਜ਼ਮਾਨੈ ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜ਼ੂਲ ਨਿਦਾਨੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੁ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵੁਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਧ ਰੂਪ ਹੈ ਅਨਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੀ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੀ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਵਾਦੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਭਾਗੇ ਸੁਸਰਭਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਚੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਵੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਅਦਿਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰਗਹੰਤਾ ਸਰਬੰਗੰਤਾ ਸਰਬੰਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰਗਹਰਤਾ ਸਰਬੰਗਕਰਤਾ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰਗ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰਗ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰਗ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰਗ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੀ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਮਾਤੇ ਸਦਾ ਸਰਵਸਾਤੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਵੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸੁਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮਿਕੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸਿਕਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰਕ ਪ੍ਰਨਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰਕ ਪ੍ਰਨਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪਰਮ ਪਰਮੀਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ
आदेशुल आलेख है, हमेशुल अपेक है, जमीनुल जुमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, कि जरूरत जुमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि मितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि मितो विभूत है, कि मितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि मितो अपंग है, माध पार चंद्वा प्रसाद, मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम, अरगर अगंज हर नर परपंज, अनगन प्रणाम मन मन सलाम, हर नर अखंड बरनर अमंड, अनपवनाश मन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल तल मुदाम, अंशे जंग असन अपंग उपमा पार गतमित उदार, जल तल मंड दिस विस अपंड, जल तल महंत दिस विस बेअंत, अनपवनाश त्रितर तुरास, आजान बाहु एक कैसे दाहु, ओंकारात कथनी अनाद, खलखंड के आल गुरबर अकार, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंशिज गात आज जिना बातन, चंज गातन रंज बातन, टुट पंडार अंडट अपार, आडीठ धर्म वत टीठ कर मन ब्रन, अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत व प्रसाद, करुणालय है अरकालय है, कलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारण है, त्रित के तरण है जग के करने, मन मान्य है जग जान्य है, सर्वंग पर है सर्वंग कर है, सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है, करुणा कर है विश्वंपर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है, करुणा कर है जपा जप है तपा तप है, अकृता कृत है मृता मृत है, मृता मृत है करुणा कृत है, अकृता कृत है धरणी त्रित है, मृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत है मृता मृत है, जबा कृत है मृता मृत है, निर्नायक है खलकायक है, विश्वंपर है कुरुणालय है, निरपनायक है सर्वपायक है, पापंजन है अरगंजन है, रिपतापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्म है सर्वात्म है, आत्म बस है जस की जस है, भुजंग प्या चंद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आशासे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, कचरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपक अकाल, दयाल अलेख अपेख अनाम काम, अगाह अटाह नाथे परमाते, जो नियमो नि नरागे नरंगे नरूपे नरेखे, अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे, पुजंग प्रया चंद, नमस्तुल परनामे सुमस्तुल परनासे, अगंजुल नामे सुमस्तुल निवासे, निरकामंग बेपूते सुमस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते, सदा सचदानंद सत्रंग परनासी, करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजाय विपूते गजाय विघ्ने में, हरियं करियं करिमुल रही में, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते, स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्व जुगते, दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंग।

अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद को अंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावने आईयां, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया।

वाचा पाउन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वार लाए भावनी इतना दसवां द्वार दिखाया, तय अनेक रूप नाव नव निध तिस्ता अंत न जाई पाया, कह नान कर प्यार है जियो गुफांत रख कह वाजा पवन मजाया, इहो सचा सुहेला सच है कर गावहु, गावहु ता सुहेला कर सच है जिथे सदा सच ते आवहे, सचो ते आवहे जा तुद भावहे गुरमुख जिना बुझावहे।

माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई।

नह उपजिव कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तै हारे ओ अस थिर मत

0: विस्माद रूप चमात्र नागी प्रजंत विस्माद पौन चमाद पाणी चमाद अग्नि खे दिणी विषमाद चमाद काणी चमाद तल गे प्राणी विषमाद संयोग समाद विजोग समाद भुख समाद भोग विषमाद शक्ति समाद चाला विषमाद दुजड़ी समाद रहा विषमाद नेड़े समाद दूर समाद देखे हाजरा हजोर वेख बजाम रहा विषमाद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भौ सुखसार कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद पुराण कतीबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया।

अठसठ तीर्थ जे नावै उतरे नाही मैं, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी।

0: साहिब जी, प्रभ जी, तू मेरे प्राण आधार है। नमस्कार दंडौत बंधन, अनेक बार जाऊं बार, सुख होटल गुर सेवी है।
1: अहनिस सहज सुभाए,
0: दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।

0: राम भगत नह कीनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
1: फतेह। सत्कारियो सत्संग जीओ, सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत होए। अमृत वेले तुसा सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने, उपरंत अज दे हुक्मनामे दीआं विचारां सरवण कीतियां, अरदास विच शामिल होए हो, पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता। सतगुरु कृपा करन साडा सारिआं दा गाविआ सुणिआ महाराज दर ते प्रवान करन, इसे तरह गुरु चरणां नाल जुड़े रहीए। बेनती है, गुरु घर दीआं दो बिल्डिंगां नॉर्थ हाल एंड साउथ हाल बन रही ने, आप संगतां वध चढ़ के हिस्सा पा रहे हो, सेवा कर रहे हो, होर भी आप संगतां दे चरणां च बेनती, जिन्ना भी हो सके दसवंध दी कारपेटा कढ के गुरु घर दे विच सेवा करके जरूर गुरु दीआं खुशियां प्राप्त करिए जीओ। दूसरी बेनती है, 17 अक्तूबर नूं भाव आ जिहड़ा शनिवार आ रहा, इस दिन 17 अक्तूबर नूं कत्तक दी संगरांद दा दिहाड़ा आ रहा, 18 अक्तूबर नूं गुरबाणी कंठ मुकाबले जो स्टॉकटन गुरु घर विच हो रहे हैं, जिन्हां दा समां सवेरे 8 बजे तों लैके शामी 5 बजे तक है। गुरु घर दे विच 12 अक्तूबर तों लैके 18 अक्तूबर तक गुरमुख कैंप चल रहा, गुरु घर की लाइब्रेरी दे विच कैंप दा समां शामी 6 बजे तों लैके शामी 8 बजे तक हुंदा। आप संगतां इहदे विच जरूर हिस्सा लो, आण के सिमरन विच जुड़ना करो जीओ। 23 अक्तूबर नूं जन्मदिन बाबा बुढ़ा साहिब जी दा आ रहा, 27 अक्तूबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश पुरब आ रहा, 3 नवंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का गुरता गद्दी दिवस, 3 नवंबर नूं धन धन साहिब श्री गुरु हर राय साहब महाराज जी का ज्योति जोत दिहाड़ा आ रहा, 8 नवंबर नूं बंदी छोड़ दिवस भाव दिवाली का दिन आ रहा। ये सारे दिहाड़े आप संगतां दे सहयोग नाल गुरु घर दे विच बड़े सोहणे ढंग दे नाल वड्डे पद्धर ते मनाए जाणगे, आप संगतां ने जरूर सहयोग बख्शिश करना जीओ। एक होर बेनती है, युवा सिटी जो नगर कीर्तन हुंदा है उहदे वास्ते गुरु घर वल्लों एक बस का प्रबंध किया गया है, जिहदी टिकट $20 रखी गई है। जिन्हां ने जाना है साडे कोल ऑफिस विच आण के तुसीं $20 दे के एक टिकट वाली लै सकदे हो जी। प्रबंधकों वालों सोना उपराला किया गया, जिन्हां ने जाना हो जरूर साडे नाल गुरु घर दे दफ्तर विच आण के संपर्क कर सकते हो जी। होर गुरु घर के प्रोग्रामा की जानकारी लैण वास्ते साडे गुरु घर के सकत्तर साहब सरदार जिंदर सिंह जी मंगर साहब हुणां नाल संपर्क कर सकते हो। उन्हां दा फोन नंबर है 408-712-4145 ते उन्हां कोल होर जानकारी लै सकते हो। आओ जो सरबत दे भले वास्ते सहज पाठ चल रहे ने, सत्कारयोग वीर भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पहुंच चुके ने, उन्हां दी रसना तों सहज पाठ सरवण करिए जी। गुरु के लंगर तैयार ने छक के जाण दी कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, वडभागी हो जो गुरु रहमत प्राप्त कर रहे हो, गुरु दरबार विच बैठ के घरां विच बैठ के। आओ समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा, अज पावन अंग 1385 तों श्री सहज पाठ अगे प्रारंभ होणगे, सवैये प्रारंभ हो रहे हैं। प्यार सताब जी ने हाजरियां भरनियां 1385 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं जी।

के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार भार पर ही ते पर अपर अपार पर आपनु पावन कर मंत्र न दूसरो तार ओपत परलो एक है निमक तू कार आन नाही संसार उजियारो निर्मर कोट पराचत जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जिह क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन धारे एक थे किए विस्तारे पूर रहो श्रभ में।

के बाल बालो बाल बालो सद बलिहारु निरंकार आकारु अचल पूरन अविनाशी हरखवंत आनंत रूप निर्मल विगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी धन धन ते धन जन जिहे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परसेओ से जन्म मरण दुहते रहो सत सत हर सत सत सते सत भणिए दूसर आन न अवर पुरख पौ रातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जेह रसन चाखेओ तेह जन तृप्त अघाय जेह ठाकुर सुप्रसन्न भयो सत संगत तेह प्यार हर गुर नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उधार।

मूरत करी चसा फल सिमरन राम नाम रसना संग लो पूछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाओ सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म

पान सोधे सुख पुंचत, संकट काट विपत हरी, मात पिता भाई अर बंधप, भूजन की सब सूझ परी, वर्धमान हुवत दिन प्रतनित, आवत निकट बिखम जरी। रे गुणहीन दीन माया कृम, सिमर स्वामी एक करी, कर गह लिहो कृपाल कृपा निद, नानक काट भ्रम भरी। रे मन मूस बिला मह गर्भत, करतब करत महा मुगना, संपत दोल झोल संग झूलत, माया मगन भ्रमत कुगना, सुत बनता।

दृष्ट निहारू, कोट न ऊट न कोस न छोटा, करत विकार दू कर चारू, मित्र न पुत्र कलत्र साजन सख, उल्टत जात विर की छारू, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरहु अगम अपारहु, श्रीपत नाथ शरण नानक जन।

प्रीत सुत पाही, ताहू तेले रखी निरारी। तावन पावन कूर कमावन, एह बिद करत औध तन जारी। मीत सुत पाई ताहू तेले रखी निरारी। तावन पावन कूर कमावन, एह बिद करत औध तन जारी। कर्म धर्म संजम सुच नेमा, चंचल संग सगल विदहारी। पस पंखी बिरख अस्थावर, बहुविध जोन भ्रम्यो अत भारी। खिन पल चसा।

अंत की बार होत कथकारी, नानक संत चरण संग उदरे, होर माया मगन चले सब डारी। ब्रह्मादिक शिव चंद मुनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मनिंदर खोजते गोरख, तरन गगन आवत गुण तावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव, एक तिल ताको मर्म न पावत, प्रै प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती, हर जन ताकै दर्श समावत। तिसै त्याग आन को जाचै, मुख दंत सरसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुख दाता, नानक दास तुझै समझावत। माया रंग बिरंग करत मोह, माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह, कै कूप गुबार पर्यो है। इता गब आकाश न मावत, बिष्टा अस्त क्रिम उदर पर्यो है। दह दिस ताई महा बिकिया कहो, पार तन छीन अज्ञान हरिओ है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो, जम दूतन दंड मृत मरिओ है। अनिक जोन संकट नरक पुंचत, सासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उदरह से नानक, कर कृपा संताप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूर्ण होई आस हमारी। औकद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, बिनस जाहि हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सुच क्रिया, चरण कमल हृदय प्रभ धारी। साजन मीत सखा हर बंधप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। कोट गही स्वामी समरथ है, नानक दास सदा बलिहारी। आवध कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग, दावन बंध्यो न जात विदे मन दर्श मग। तावक जर्यो न जात रहो जन तूर लग, नीर न साक सबोर चले हर पंथ पग।

विचरह अनेक शास्त्र बहु खटुआ, पश्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंद है बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल

अनिक पात थाटे कर थटुआ, सुबैये महल्ले पहले के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बखियाता, तात चरण ले हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरे, गाव है गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान धरे, गाव है इंद्राद भगत प्रहलादिक, आत्म रस जिन जानियो, कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज योग जिन मानियो।

साधु साधु सिद्धादिक मुन जन गावे अचल चला गावे गुण धूम अटल मंडल वै भगत भाई रस जानियो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो गावे कपिलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावे जम दगन परसरामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो ऊधौ अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वातम जिन जानियो कब काल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानियो गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुणा गावे गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक।

ब्रह्मा गुण उच्चर जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सुवारिय ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो गुण गावे नवनाथ धन गुर साच समायो गुण गावे नवनाथ धन गुर साच समायो मां धाता गुण रवै जेन चक्र वै कहायो गुण गावे बल राओ सप्त पाताल बसन पाओ परथर गुण उच्चरै सदा गुर संग रहंताओ दूरबा परूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब काल सुजस नानक गुर घट घट सहज समायो सवैये महले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थो सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थो सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो ता धरियो मस्तक हथ सहज अम्यो

पंचभूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खेल है समत सार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत कर गुर परस मुरार जाकी दृष्ट अमृत तार कालुख खन उतार तिमर अज्ञान जाहि दर्श द्वार वे जो

सर्वगत अलक बेड़ानी सहज भाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुर गम प्रणाम गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परस्यु कल समुल वै जन दर्शन लहने पयो मन विसास पायो गहर गहो हदरथ दियो गरण नास तन नठियो अम्यो अंतरगत पियो रिद विगास जागियो अलख कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज

सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परसे गुरु कै अठसठ मज्जन होए। सच तीरथ सच इसनान हर भोजन पाऊ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायु गुर शब्द सच नाम संगति गो है जिस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखाण दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवान अमै दृष्ट शुभ करै हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध यार लोग मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खूवै गुर नव नित दरियाओ जन्म हम काल खतुवै सुका हुटल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सुवैये महल्ले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जाका एक नाम अचल संसारे जिन भगत भव जल तारे सिमर हो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थप्यो जेन स्रव सिद्धि काव जन कल सुबुद्धि कीरत जन अमरदास बस्तीरिया कीरत राव किरण पर

ऊधो अक्रूर त्रिलोचन नामा, ऊधो अक्रूर त्रिलोचन नामा, कल कबीर किल विक हरिया, सोई नाम अचल भगत है भव तारण, अमरदास गुरु कौ फुरिया, तित नाम लाग तेतीस त्यावहै, जति तपीसर मन वसिया, सोई नाम सिमर गंगेव पितामह, चरण चित अमृत रसिया।

क्या लीजै क्या तजिए बौरे ज्योतिष है सोशार जिस भिख्या को तुम्हें अपनी कर जानो सा छाड़ जाहो सिर पार तिल तिल पल पल ओद फुन घट है बूझ न सकै गुवार सो किछ करे जी साथ न चल है साकत कायाचार संत जना कै संग मिल बौरे तो पावे मुख द्वार बिन सत्संग सुख किने न पाया जय पूछो वेद विचार राणा राव सब है कौ चालै झूठ जाहे पसा राणा राव सब है कौ चालै झूठ छूट जाहे पसा।

काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो जगरत पाप रहाव। जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसन आप, खिन मैं छोड़ जाए बिख्या रस तौला गए पछताप। जो तुमरे प्रभु ते स्वामी हर तिन के जापो जाप, उपदेश करत नानक जन तुम को जो सुनो तौ जाए संताप। सारग महला चौथा घर पंजवां दुप दे पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जाप मन जगन्नाथ जगदीशरो जग जीवनो मन मोहन स्यो प्रीत लागी मैं हर हर हर टेक सब दिन से सब रात रहाव। हर की उपमा अनेक अनेक अनेक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादग तब गुण स्वामी गणन न जात। तू हर बेअंत तू हर बेअंत तू हर स्वामी, तू आपे ही जाने अपनी भां अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर निकट ही बसते, ते हर जन के जन साधु हर पगात। ते हर के जन हर स्यो रल मिले, जैसे जन नानक सलल सलल मिलात। सारंग महला पंचौथा जप मन नर हरे नर हर स्वामी हर सगल देव देव देवा, श्री राम राम नाम हर प्रीतम मोरा रहाव। जित गृह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते, तित गृह वाचे पंच सबत वड भाग मथोरा। तिन जन के सब पाप गए सब दोख गए सब रोग गए, काम क्रोध लो मोह अभिमान गए। तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा। हर राम बोलो हर साधु हर जन के जन साधु, जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर आराधु। हर के जन साधु हर राम बोल सब पाप गवाधु। नित नित जागरण करो सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा। मन इच्छे फल पावो सब फल पावो, धर्म अर्थ काम मोख जन नानक हर स्यो मिले हर भगत तोरा। सारंग महला चौथा जप मन माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी। सब दुखन को हनता सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ। हर कटे कट बसता हर जल थले हर बसता, हर थान थुनंतर बसता मैं हर देखन को चाओ। कोई आवै संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोह मार्ग दिखलावै। तिस जन के हो मल मल धोवा पाओ, हर जान को हर मिलिया हर सरदा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया मेरा मन तन आनंद पाए मैं देखिया हर राव। जन नानक को कृपा पई हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई मैं आन दिनो साध साध सदा हर जपिया हर नाओ। सारंग महला चौथा जाप मन निरपो सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी संभव। मेरे मन अनदिनो त्याए निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को कोट कोट तेतीस, सिद्ध यति जोगी तट ताट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले ते उत्तम, भगत भले जो पावत हर राम मुरारी। जिनका अंग करे मेरा स्वामी तिनकी नानक हर पैज सवारी। सारंग महला चौथा पड़ताल जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, सब सिष्ट का प्रभो मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाव। हर का नाम अमृत हर हर हरे सो पिए जिस राम प्यासी। हर आप दयाल दया कर मिले जिस सत गुरु, सो जन हर हर अमृत नाम चुखासी। जो जन सेवा सदा सदा मेरा हर हरे, तिनका सब दुख भूख भरम पौ जासी। जन नानक नाम लय तां जीवै ज्यों चातर जल पिए तृप्तासी। सारंग महला चौथा
जाप मन श्री राम राम रंत राम सत सत राम बोल।

आप आप सबत जगे, जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम, राम राय सो जान राम नाम लेव लागे। राम नाम की उपमा देखो हर संतो, सो भगत जना की पत राख है विच काल जोग अगे। जन नानक अंग किया मेरा राम राय, दुश्मन दुख गए सब पगे। सारंग महला पंजवां, चुप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर मूर्त को बल जाओ, अंतर प्यास यात्रिक जो जल की सफल दर्शन कद पाओ। रहा अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक, भक्त वचन हर नाओ। जाको कोई न रखे प्राणी, ते सुंदे असराओ। नी तरिया तार निगतिया गात, नि थाम्या तू थाओ। दै दिस जाओ तहां तू संगे, दै दिस जाओ तहां तू संगे, तेरी तीर्थ कर्म कमाओ। एक से लाख लाख ते का तेरी गत में कह न सकाओ। तू बेअंत तेरी मितनी पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यो गोष्ट, हर साधन स्यो लिव लाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्श मन चाओ। सारंग महला पंजवा, हार जी अंतर जमी जान, करत बुराई मनुख ते छपाई। साखी भूत पवान, रहाओ बैसनो नाम करत खट करमा। अंतर लोभ जूठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान। कर है सोम पाघिर पर दरबाय, अंतर झूठ गुमान। शास्त्र वेद की वेद नहीं जाने, व्यापे मन कै मान। संध्या काल कर है संवरता, जो सफरी दम खान। प्रभु पुलाए उजड़ पाए, ने फल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया, जिस करी कृपा भगवान। यून सतगुर से परम पद पाया, उदरिया सगल विस्वान। क्या हम कथा है किछ कथ नहीं जाना है, प्रभु पावै तिवै बोलान। साध संगत की तूर एक मांगो, जन नानक पर्यो सरान। सारंग महला पंजवा, अब मोरो नाचनो रहो, लाल रंगीला सजे पायो सतगुर बचन लहो। रहाओ कुआर कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन गृह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। जो कन को कोठारी चढ़ियो, कवरो होत फिरो। जाते सुध पै है बारे, तब से थान फिर थिरो। जो दिन रहन तौलो, बजो मूर्त करी पलो। बजावन हारो ऊट पूट सिधार्यो, तब फिर बाज न पयो। जैसे कुंभ उदक पूरा न्यो, तब भिन्न दृष्टो। कौ नान कुंभ जल में डार्यो, अंब है अंब मिलो। सारंग महला पंजवां, आप पूछे क्या कहा, लेनो नाम अमृत रसनी को। बावर बिख स्यो गहर हार हाव, दुलब जन्म चृंकार पायो। जातो कौडी बदलहा, का थूरी को गाह क्यायो। लाद्यो कालर बिरख जेवहा, आयो लाभ लाभन कहताई। मोहन टगौरी स्यो उलझ पहा, काच बादर लाल खोई है फिर अवसर कदलहा। सगल प्राध एक गुण नाही, ठाकुर छोड़ दास भजहा। आई मसल जड़ वत्ती न्याई, ज्यो तस्कर दुर ज्यो तस्कर दर सानहा। आन पावन कोई सूज हरदास, असर नहीं पर रहा। कौन अनता भी मन छुटी है, जो सगले अवगन मेट तरहा। सारंग महला पंजवा, माई धीर रही प्रे बहुत सिबिराग्यो। नेक भांत अनूप रंग रे, तिन सुरुचन लाग्यो। रहा निस्बास रुपरे प्रे मुकटे रहो, नींद पलक नहीं जाग्यो। हार कजर बस्तर अनेक सिगार रे, बिन हा बिन फिर सब बिख लाग्यो। पूछो पूछो दीन भांत कर, को कह प्रे देसांग्यो। हियो हियो सब मन तन अर्पो, सीस चरण पर राख्यो। चरण बंदना मोड़क दासरो, द्यो साध संगत अरदाग्यो। करो कृपा मोय प्रभु मिलावो, निमक दर्स पेखा ग्यो। दृष्ट भई तपी तरायो, मेरा मन अनदिन शीतला ग्यो। कहो नानक रस मंगल गाए, शब्द नाद बाज्यो। सारंग महला पंजवां, माई सत सत सत हर सत सत सत सदा। बचन गुरु जो पूरे कहो, मैं छी गांठरी बदार। निस्बासुर नक्षत्र बिना सी, रब सियर बिना दा। गिर बसुदा जल पवन जाए, गो एक साध बचन अटला दा।
अंड बिनासी जेर बिनासी उत्पसेत बिनादा चार बिना दी खटे बिनासी एक साध बचन ने चलादा राज बिनासी ताम बिनासी साधक की बेनादा दृष्टमान है सगल बिनासी एक साध बचन आगादा आपे आप ही आपे सव्यापन खेल दिखादा पायो न जाई कही पांतरे प्रभु नानक गुर मिलादा सारंग महला पंजवा मेरा मन बास भो गुर गोविंद जहां सिमरन पयो है ठाकुर तहां नगर सुख आनंद रहाओ जहां बिसर ठाकुर प्यारो तहां दुख सव्यापत जय गुण गाये आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपद जहाँ श्रवण हर कथा न सुनिए तय महाप्यान उद्यानंद जहाँ कीर्तन साध संगत रस तय सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बिरख बरख जीवै सगली औद बिरथानंद एक निमको बिंद भजन कर तो सदा सदा जीवानंद सरन सरन सरन प्रपाव दिशा साध संगत कृपान दो नानक पूरा हो है सर्व में सर्व गुणा गुणा बेद जान दो सर्ग महला पंजवा आप मोहराम भरोसो पाए जो जो सरन परयो करुणा नित्य ते पवै तराय रहा सुख सोयो और सहि समायो सहसा गुर है गवाय जो चाह सोई हर की हो मन वांछित फल पाए हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाए चरणी चलो मार्ग ठाकुर कहे रसनार गुण गाए देखो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए पायो लाल मोल नाम हर छोड़ न कथा हो जाए कवन उपमा कौन मडाई क्या गुण कहोरी जाए हो कृपाल दया दीन दया प्रभ जन नानक दास दसाए सर्ग महला पंजवा ओए सुख का स्यो वर्ण सुनावत नंद विनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहा विषम भई पेख विस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम मूलक जो चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राख्यो बूझ न आवत जावत जाको हृदय प्रगास पयो हर उआ के कही न जाए कहावत आन पाव जेते कछ कहिये तेते सीखे पावत चिंत लाल गृह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे प्रखावत निर्गुण निरंकार अविनाशी अतुलो तुल्यो न जावत कौ नानक जर जन जरिया तिस ही कौ बन आवत सारंग महला पंजवा बिखई दिन रहने बिही गुदार है गोविंद न भजय हम बुद्ध माता जन्म जो है जोहार है रहाव नाम मोला प्रीत न तिस्यो पर निंदा हितकार है चापर भांस सवार तृण को द्वार पावक जा रहा है कालर कोट उठा वह मुंडा है अमृत मन ते डार है उड बस्त्र काजर में परया बौर बौर फिर जा रहा है काटा पेड़ डाल पर ठाडो खाए खाए मुस्कार है गिरियो जाय रसा तल परियो छिटी छिटी सिर पार है निर्वैर संग वैर चाहे पहुँच न सक गुवार है कौन आन संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार है सारंग महला पंजवा अवर सब फूले प्रमत न जानिया एक सुधा कर जाकर हृदय वसिया तिन बेदन तिन बेद है तत् पछानिया रहा पर व्यर्थ मार्ग जेता किच हो तेता लोग पचारा जब लो हृदय नहीं प्रगासा ता लो आंधा अंधारा जैसे धरती साध है बहुविध बिन भी जय नहीं जाम है राम नाम बिन मुक्त न होई है टूटे नाही अब मन है निर्बलो है अतश्रम पावे नैनू कैसे रिस बिन गुर पेटे मुक्त न काहू मृत नहीं जगदीश है खोजत खोजत है बिचार्यो सर्व सुखार नामा कौ नानक तिस भयो प्रावत जाकर लेख मथामा सारंग महला पंजवा अंद राम के गुण कही है सगल बतार सर्व सुख सिद्ध मन बांछित फल लई है रहा आवो संत प्राण सुखदाते सिमरै प्रभु अविनाशी नाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो कटवासी गावत सुनत सुनावत सरदा हर रस पी बड़ पागे कल कलेश मिटे सब तंते राम नाम लिव जागे काम क्रोध झूठ ताज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे तू सम्राट पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा पूर रहो प्रा सर्व मैं ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरुदेव चरण जाके संग पार ब्रह्म त्याय उपदेश हमारी गत करन रहा
दुख रोग पै सगल विनाशे जो आवे हर संत शरण आप जपै अवरै नाम जपावै वड समर्थ तारण तरण जाको मंत्र उतारे सहसा ऊणे को सुबर परन हरदासन की आज्ञा मानते नाही पुन गर्व परन भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन जाको पयो कृपाल बिठला तिन हर हर अजर जरन हर हर रस है अगाने सह समाने मुक्ते नाही जात बरन गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उदरन सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुण निंद मंगल गायो पड़े संयोग पड़े दिन अवसर जो गोपाल रि जायो रहाओ संतै चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा साधै मंत्र मोर लो मनुआ ताते गत होए त्रै गुनिया भक्त दर्श देख नैन रंगा लो मोह टूटे भ्रम संगा कहो नानक सत सहज आनंदा खोल भीत मिले परमानंदा सारंग महला पंजवा घर दूजा।

प्रिय प्रीत मनोहर मन न रहे बोभेद उमकाई रहाव। चित मन चित व प्रिय प्रीत मरागी कद पाव हर दर्शाई जन करो है मन नहीं तीरे कौ है रे संत मिलाई। जाप तप संयम पुन सब होम ते सर्प सब सुख जाई एक निमिक प्रिय दर्श दिखावे ते संतन कह बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई मानव मान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई। देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मिलाई प्रभ रंग दयाल मोह गृह मैं पाया जन नानक तप्त बुझाई। सारिंग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक घोर मैं उर्द तब करता निमक निमक गुण गाही राव। अनेक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुल पाही गर्भ छोड़ गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करे बुराई ठगाई दिन रायन नेह फल कर्म कमाही। कान नाही गुण गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संकूल लपटायो उर्ज परयो कुसमाही धर्म राय जप क्रस बवरे तो काल मुखा उठ जाही। सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस मस लेख लिखाही कौ नानक तिन जन बलिहारी सो अलिप रहे मा सो अलिप रहे मन माही। सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिछड़ तोर मृतका गृह में रह न पाई रहा। जी अहीं प्राण को दाता जाके संग सुहाई करो कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई। चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बांछाई जय प्रसाद मिलिय प्रभ नानक बल बल ताक हो जाई। सारंग महला पंजवा उआ अवसर कहो बल जाई आठ पैर अपना प्रभ सिमरन वड़पागी हर पाई रहाओ। पलोक वीर दास दासन को उत्तम जैन उत्तम सैन जन नाई ऊचते ऊच नाम देव समदर्शी रविदास ठाकुर बने आई। जियो पिंड तन तन साधन काहे मन संतरे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले कुसाई। सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरु आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पैर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तो तेरा जो पीवे ते सही तृप्तास। जन्म जन्म के किल बिखनासा आगे दर गए हो खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तंदरस प्यास। सारंग महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहा लुभाइया यान को तूत प्रभ सदा सहाई जिये संग तेरे काम को रहाओ। अमृत नाम प्रे प्रीत मनोहरि है अगावन मान को अकाल मूर्त है सा संतन की ठहर निकी ध्यान को बाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारण मान को खोज लहो नानक सुखा नाहर नामा विश्राम को। सारंग महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाए रोग सोग तेरे मिटे सगल अग निमक ही हर नाम ते आए रहाओ। छोड़ सियाण बहु चतुराई साधु सरणी जाय पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जानते होवे धर्म राय। एक सिर नाही को दूजा आन न बियो लवै लाए मात पिता भाई नानको सुखदाता हर प्राण मात पिता भाई नानको सुखदाता हर प्राण साए। सारंग महला पंजवा हर जन सगल उधारे संग के पै पुनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ। मार्ग चले तिनी सुख पाया जन से गोष्ठ से तरे बूढ़त घोर अंधकूप मैं ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े है पाई तिन साधु संग मुख जुरे। तिनकी तूर बांछे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे। सारंग महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याए एक पलक सुख साध समागम कोट वैकुंठ पाए रहा।
दुर्लभ दे जप होत पुनीता जम की त्रास निवार महापद के पाते कुतर है हर नाम और तार है जो जो सुन राम जस निर्मलता का जन्म मरण दुख नासा कहु नानक पाई है वड भागी मन तन होए बिगासा सारंग महला पंजवां दुप दे घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन घर आवो करो जो दरिया मान करो बमान बोलो भूल चूक तेरी प्रेचिरिया रहा निकट सुनो अर पेखो नारी निकट सुनो अर पेखो नाही भ्रम भ्रम दुख भरिया होए कृपाल गुरु लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलख बरिया सा संगत की भीड़ जो पाई तो नानक हर संग मेरिया सारंग महला पंजवां आप क्या सोचो सोच बिसारी करनी सा सोई कर रहा देहो नाम बेलहारी रहाओ चौदह स्फूल रही बिख्या बिख गुर मंत्र मुख गरुड़ारी हा दे राख्यो करके अपना जोक जल कमला अल पारी हो ना ही किछ मैं क्या हो सा सब तुम ही कर तारी नानक भाग परे हर पाचै राख संतन सदकारी सारंग महला पंजवां अब मोहे सर्व पाप बरि बिरकाते करण कारण सम्राट स्वामी हर एक हस्ते मेरी गाते रहाव देखे नान रूप बौरंगायन नाही तुम भांते देह आधार सर्व को ठाकर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो पर्यो त्यो गुर मेर चरण पराते कौ नानक मैं सर्व सुख पाया हे सुख बिहानी राते सारंग महला पंजवां आब मोहे लभ दियो है हर टेका गुरदयाल पय सुखदाई उंदलाय मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास विवेका ज्यों जल तरंग फेम जल हुई है सेवक ठाकुर पय का जय ते उठ्यो तही आयो सब ही एक एका नानक दृष्कायो सर्व ठाई प्राणपति हर निमका प्राणपति हर समका सारंग महला पंजवां मेरा मन एक ही प्रे मांगे पीखायो सर्व थान देश प्रे रोम न संसर लागे रहाव मैं निरे अनेक भोजन बहु बिंजन तिन सो दृष्ण करे रुचांगे हर रस चाहे प्रे प्रे मुख टेरे ज्यो अल कमला लो भांगे गुण निदान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांग गुरु नानक प्रपाए पठायो मिलो सखा गल लागे सारंग महला पंजवां आब मोरो ठाकुर स्यो मन माना साध कृपाल दया पय है छे दियो दुष्ट बिगाना रहाओ तुम्हें सुंदर तुम्हें स्याने तुम्हें सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख न कीमत जाना तुम्हें नायक तुम्हें छत्रपा तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सत कुरबाना सारंग महला पंजवां मेरे मन चीत आए प्रेरंगा बिसरे तंद बंद माया कर जन सवाई जंगा रहाव हर सेओ हर हृदय बसावो हर पाया सत्संगा ऐसो मिलियो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रे अपना गुरु बस कर दीना भोगो भोग निसंगा निरपो पाए नानक पो मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवां हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवणों पूरे देहा प्रेयंक समानी रहा छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगर सुजानी जे कर मैं बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बस आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन मानिया सब चूकी कान लोकानी सारंग महला पंजवां आब मेरो पंचांते संग टूटा दर्शन देख पय आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाओ बिखम थान बहुत बहुत हरिया नेक राख सुरूटा बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानाथ पय लूटा बहुत खजाना मेरे पाले परिया अमोल लाख या कूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तो मन मैं हर रस कूटा सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकुर स्यो मन लीना प्राण दान गुरपुरे दिया उर जायो जल जो जल मीना रहाओ
काम क्रोध लोभ मद मत्सर हे अर्प सगल दान कीना मंत दड़ाए हरे औखद गुर दी हो तो मिलियो सगल परवीना गृह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो कोई प्रभ दीना को नानक मैं सहज कर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन साहब जी तेरे तू तार है छूट है संघार निमक कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधार है रहा करह अरदास बहुत बेनंती निमक निमक समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ए भूपत बपरे कही है कहो ए किस नो मार है राख राख राख सुखदाते सब नानक जग तुम्हार है सारंग महला पंजवा अब मोहे धन पायो हर नामा पय चिंत रिसन सब बुझी है लिखियो लेख मता मार खोजत खोजत पयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा गुर कृपाल सौदा है जोरियो हाथ चरियो लाल अगामा आन व्यापार बन जो करियो तेते दुख सहामा गोविंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरे मन में इस लगे प्रे बोला गुरबाह पगर प्रभ सेवा लाए सा दयाल हर टोला राव प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रतपालक मोहलतर सहित सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं उला जे तक तपसा लै तो दास तुम्हारे घास मडावै के तक बोला जन नानके पर प्रभ पुरख विधाते मेरे ठाकुर गह तोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निम को पाय समाव देख चरित मन मोहं रहाव जिस सुनिया मन होय रहस्या हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बण आई प्रभ तोहं केल विख गए मन निर्मल होई है गुर काडे माया द्रोहं कौ नानक मैं सो प्रपाया करण कार समरथोहं सारंग महला पंजवा नैनो देखियो चल तमासा सब हो दूर सब हो तेने रह गम गम कटवा सारहाओ पूल न पूल लिख न चलावे मता न करे पचासा खिन मैं साज सवार बिना है भगत वचल गुणता सा अंद कूप मैं दीपक बल्यो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्स पेख सुख पाया सब पूर्ण होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा यान मार्ग जत जेता किच ताई ते तो ही दुख हावा राव ने तपनीत भय दर्स पेके हस पुनीत टहलावा रिदा पुनीत हृदय हर बस्यो मस्त पुनीत संत तुरावा सर्व निदान नाम हर हर कह जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक गुर पूरा पेट्यो सुख सहजे अनद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जय मात पिता सुत भाई न पहुंचे तहा तहा तू रखा रहाओ अंध कूप गरे मह तिन सिमर्यो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गर मुक्त गोर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्त्याया घाय रसन चखा कौ नानक सुख सहज मैं पाया गुरलाही सगल तिखा सारंग महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभुति आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे न ताती बाया रहा जे ते सा समले ते ही गुण गाया निमखना बिसरा करिना बिसरा संग संगे जात जाया हो बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानकाहू परवाह जो सुख सागर में पाया सारंग महला पंजवा मेरे मन संत लगो गुर मीठा खुलियो कर्म भयो परगासा घट घट हर हर डीठा रहाओ पार ब्रह्म अजूनी संभो सर्वतान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बल बल प्राभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी की ये सगल तीर समझनीठा कौ नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमक बचन प्रभ ही रह बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रहाओ कृपा निदान गुण नायक ठाकुर सुख समूह सब नाथे एक आस मोहे तेरी स्वामी और द्वितीय आस बिराथे
नैन तृप्ता से देख दर्शावा गुर कर तरे मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख पाया जन मरण पय लाथे सर्ग महला पंजवा रे मुड़े आन काहे कत जाई संग मनोहर मत है रे फूल फूल बिख खाई रहा प्रभ सुंदर चतुर अनूप विधाते ते सिर रुच नहीं राई मोहन स्यो मां बा मोहन स्यो बावर मन मोयो झूठ गौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुखरता संतन स्यो बने आई सगल निदान करे मैं पाए कौ नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा ओं प्रीत प्रीत चीत पहलरिया जो तो वचन दियो मेरे सतगुर तो मैं बाम तो मैं साज सिगरिया रहा हम भूले तुम सदाया भूला हम पतत तुम पतत उदरिया हम नीच बिरख तुम मैला घर लाज संग संग बसरिया तुम गभीर तीर उपकारी हम क्या बपुरे जंतरिया गुर कृपाल नानक हर मिल्यो तो मेरी सुख से जरिया सारंग महला पंजवा मानो ए दिन स्थान परवा ना सकते सगलते करी संयोग सुहाव ऐसा गुर संग या ना रहा तन सुभाग तन सुहागा तन देत जन्माना ए तन तुम राग सब गृह तन तुम राहियो क्यों कुर्बाना कूट लाख राज सुख पाए एक निमक एक दृष्टाना जो कहो मुखो सेवके बैसिय सुख नानक अंत न जाना सारंग महला पंजवा अब मोरो सहसा दुख गया और उपाव सगल त्याग छोड़े सदगुर शरण पया रहा सर्व सिद्ध कार्य सब सवरे रोग सगल ही खया कोट अपराध खिन मैं खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंचदास गुर वसन कीने मन ने चल निर्भया आए न जावे न कत ही डोलाए फिर नानक राजया सारंग महला पंजवा प्रमे रोए तुत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यार कहा कवन कवन कहा गुन गाई रहा खेल खिलाए लाड लडावे सदा सदा अंदाई प्रतपालय बार की न्याई जैसे मात पिताई तेस बिन्निंग नहीं रह सकी है बिसर न कब हो जाई कौ नान मेर संत संगते मगन पय लिबलाई सारंग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाय आसना अबर काहू की जय सुखदाता प्रत्याय रहा सुख मंगल कल्याण जिसे करते सही सरणी पाई है तिसे त्याग मानुक जो सेव तो लाज लोन हो जाइय ई कोट पकड़ी ठाकुर की गुरमिल मत बुद्ध पाई है गुण निधान नानक प्रमिलया सगल चुकी मोहताई है सारंग महला पंजवा ओट सानी प्रभ जियो मेरा है दृष्ण लिया अवर काहू कहो मान महत प्रभ तेरा रहा अंगीकार कियो प्रभ अपने काढ़ लिया बिख के रहे अमृत नाम औखद मुख दीनो जाय पया गुर पै कवन उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रहे काट सिलक जो अपनो कीनो नानक सूख नेरा सारंग महला पंजवा प्रभ सिमरत दुख बिनासी पयो कृपाल जी सुखदाता हुई सगल खलासी रहाओ अवर न को सूजय प्रभिन कहो को किस पै जासी ज्यो जानो त्यों राखो ठाकुर सब के तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने सद जीवन बिनासी कहो नानक मन अनंत पया है काटी जमकी फासी सारंग महला पंजवा मेरो मन जात का तुझे समारा है हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे जो जाना है त्यो पारा रहा जो भूख तब भोजन मांगा अकाए सुख सिंगारा तब अरोग जब तुम संग बसो छुटकत होए गुबार कवन बसे रुदास दासन को त्याप्यो थापन हार नाम न बिसरे तब जीवन पाइये बिनती नानक सार सारंग महला पंजवा मानते पय पौ दूर परायो लाल दयाल गुरु गुलाल लाडिले सहज सहज गुन गायो रहा गुर बचनाथ कुमार कृपा ते बौर न कतौ तायो रहत उपाध समाध सुख आसन भक्त वचल गृह पायो नाद विनोद कोड़े आनंदा सहजे सहज समायो करना आप करावन आपे कहो नानक आप या पायो सारंग महला पंजवा
अमृत नाम मनाया धारो जिंदिया तिसकै कुर्बान है गुरपूरै नमस्कारो रहा बूझी तृष्णा सहि सोहिला काम क्रोध बिखजारो आय न जाय बसहि ठार जय आसन निरंकार एक है प्रगट एक है गुप्ता एक है तुंदुकार हो याद माध्य अंत प्रभ सोई कहो नानक साज विचार हो सारंग महला पंजवा प्राप बिन रह न जाय करी सर्व सुख ताहु कह पूर्ण जा कह सुख है हरी रहा मंगल रूप प्राण जीवन धन सिमरत अनद कना वड सिमरत सदा सत्संगे गुण रसना कमन पना थान पवित्रा मान पवित्रा पवित्र सुनन करन हारे कौ नानक ते पमन पवित्रा जा मैं संत तुम्हारे सारंग महला पंजवा रसना जपती तू ही मातगर तुम ही प्रतपालक अमृत मंडल एक तू ही रहा तुम है पिता तुम ही पुन माता तुम है मित्र तुम है मीत हित प्राता तुम परिवार तुम है आधारा तुम है जी प्राणदाता तुम्हें खजीना तुम्हें जरीना तुम्हें माणक लाला तुम्हें पार जात गुरते पाए तो नानक पय निहाला सारंग महला पंजवा जाहू काहू अपनो ही चित्यावै जो काहू को चेरे चेरो होवत ठाकुर ही पह जावै रहा अपने पै दुख अपने पै सुखा अपने ही पै बिरथा अपने पै मान अपने पै ताना अपने ही पै अर्था के नहीं राजोगन तन मिलका के नहीं बाप महतारी सर्व थोग नान अंगुर पाए पूर्ण आस हमारी सारंग महला पंजवा झूठो माया को मदमान त्रो मोह दूर कर बपरे संग गुफल जान रहाउ मिथ्या राजोगन अर उमरे मीर मलक अर खान मिथ्या का पर सुगंध चतुराए मिथ्या पूजन पान दीन बंदरो दास दासरो संत की सरान मांगन मांगो होए चिंता मिल नानक के हर प्राण सारंग महला पंजवा अपनी इतनी कछु न सारी अनेक काज अनेक तावरता उर्जवान जिंजारी रहा दिवस चार के दिस संगी ऊहा नाही जय पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नाही गवारी हो नाही नाही किच मेरा ना हमरो बस जारी करन करावन नानके प्रभ संतन संग उधारी सारंग महला पंजवा मोहनी मोहत रह न होरी साधक सिद्ध सगल की प्यारी तूटे न काहू तोरी रहा खाट शास्त्र विचरत रस नागर तीर्थ गमन न थोरी पूजा चक्र व्रत नेम तपिया उहा गैर न छोरी अंधकूप में पदत होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक भयो मुक्ता दर्शन पेगत पूरी सारंग महला पंजवा कहा कर रे खाट खाटुली पमना पार तोर चमरो अत जजरी तेरू रे तेरी रे माटुली रहाव उही ते हरिया उही ले तरियो जैसे बासा मास ले ते चाटुली देवन हार बिसारे ओंदले जो सफरी उधर पहै बह हाटुली साध बिकार बिकार झूठ रस जह जानो तय पीर बाटुली कहो नानक समझ रे आने आज काल खुलै तेरी गांठुली सारंग महला पंजवा गुर जियो संग तुहार जान्यो कोट जोध उआ की बात न पूछिए तांदर गह पी मान्यो रहाओ कमन मूल प्राणी का कहिया कमन रूप दृष्टान्यो जोत प्रगास पई माटी संग दुलब दे बखान्यो तुम ते सेव तुम ते जप तापा तुम ते तत पछान्यो कर्म संग तार कट्टी जेवरी नानक दास दसान्यो सारंग महला पंजवा हर हर दियो सेवको नाम मानस का को बपरो पाई जाको राखा राम रहाओ आप महाजन आपे पंचाय आप सेवक के काम आपे सगले दूत विदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पत्रा की सेवकी आपकी ओ बंधान आजुगा सेवकी राखे नानक को प्रभ जान सारंग महला पंजवा तू मेरे मीत सकार प्राण मन तन जियो पिंड सम तुम राय तन सीतो तुम रहतान रहा तुम ही दिए निक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पत राखो अंतर जामी जान जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते
जिन संतन जानिया तू ठाकुर तू ते आए परवान जन का संग पाई है वड भागी नानक संतन कै कुर्बान सारंग महला पंजवा करहोगा दयाल संतो मोरी तुम सम्राट कारण करना तूटी तुम ही जोरी रहाओ जन्म जन्म के बिखाई तुम तारे स्मत संग तुम्हारा पाई अनेक जोन परमते प्रभु बिसरत सा सा सहर गाई जो जो संग मिले साधु के ते ते पतत पुनीता कौ नानक जाके वड़ पागा तिन जन्म पदार्थ जीता सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जन आयो सर्व सुख आनंद सहज रस सुन तुहारो नायो रहा कृपा निदान सुख के सागर सब जस में जाको छायो संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्टायो नैनो संग संतन की सेवा चरण चारी के सायो आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानके पायो सारंग महला पंजवा जाकी राम नाम निव लागी सजन श्रीदास हेला सहजे सुखी है बड़ भागी रहा रहत बिकार अलप माया ते हम बुद्ध बिख त्यागी दर्श प्यास आस की टेक ही है प्रेपागी अचिंत सोए जाकन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी कहो नानक जिन जगत ठह कहो नानक जिन जगत ठिकाना सो माया हर जन ठागी सारंग महला पंजवा आप जन ऊपर को न पुकारे पुकारन को जो उत्तम करता गुर परमेश्वर ता को मारे रहा निर्वैर संग वैर चावे हर दर गयो हारे आजुगात प्रभु की बढ़ियाई जन की पै सुवारे निरपो पै सगल पौ मिटिया चरण कमल आधार है गुर का बचन जप्यो नाव नानक प्रगट पयो संसार सारंग महला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप जो जानो त्यो राखो रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रहाओ गुर उपदेश साध की संगत बिनस्यो सगल संताप मित्र सतर पेख समत विचार्यो सगल संभाखन जाप तपत बुझी सीतल अगाने सुन अनहद बसम पय बिस्माद अनद पया नानक मन साचा पूर्ण पूरे नाद सारंग महला पंजवा मेरा गुर मोरो सहसा उतारिया तिस गुर कह जाइये बलिहारी सदा सदा हो वारिया रहाओ गुर का नाम जप्यो दिन राती गुर के चरण मन तारिया गुर की धूर करो नित मज्जन किलविख पै किलविख मैल उतारिया गुर पूरे की करो नित सेवा गुर अपना नमस्कार सर फला दीने गुर पूरे नानक गुर निस्तारिया सारंग महला पंजवा सिमरत नाम प्राण गत पावे मिटह कलेश त्रास सब नासै साध संग हित लावै रहाव हर हर हर हर मन अराधे रसना हर जस गावै ताज मान काम क्रोध निंदा बास देव रंग लावै दामोदर दयाल अराधो गोविंद करत सुहावै कौ नान सब की होय रे ना हर हर दर्श समावै सारंग महला पंजवा अपने गुरपुरै बलिहारै प्रगट प्रताप कियो नाम को राखे रखनहारै प्रगट प्रताप कियो नाम को राखे रखनहारै रहाव निर्भव किए सेवक दास अपने सगले दुख बिदारा है अनेकों पाप त्याग जन सगले चरण कमल रिद धारा है।

बिन हर है को कहा बतावो सुख समूह करुणा मैं करता तिस प्रभ सदा त्यावो राव जा कै सूत परोए जनता तिस प्रभ का जस गावो सिमर ठाकुर सब जिस सब किस सिमर ठाकुर जन सब किस दी नायान कहा पै जावो सफल सेवा स्वामी मेरे की मन बांछत फल पावो नानक लाभ लाहा ले चालो सुख से ती कर जावो सारंग महला पंजवा ठाकुर तुम सरनाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया रहाओ अन बोलत मेरे बिरसा जाने अपना नाम जपाया दुख नाठे सुख से समाये अनंत अनंत गुण गाया बाह पकड़ कर ली ने अपने गृह अंत कूप से माया कहो नानक गुरबंधन काटे बिछरो ध्यान मिलाया सारंग महला पंजवा हर के नाम की गत ठंडी वेद पुराण सिमर साधु जन खोजत खोजत कांडी रहाओ शिव ब्रह्मचर इंद्र लोक तामे जल तो फिरिया सिमर सिमर स्वामी पै शीतल दुख दर्द प्रम हिरिया जो जो तरियो पुरातन नवतन भक्त पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जे वे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उचरो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन पन संचो मन तन लावो पाओ आन विभूत मिथ्या कर्मा नो साचा है सुआओ जी प्राण मुक्त को दाता एक कस्यो लिव लाओ कौ नानक साखी सरनाई दे सगल पियाओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी है ओट पाई मिल संताय गोपाल एक की सरनी राव पंच दोख चिदरे अतन में बिखे व्याद की करनी आस अपार दिन सगन राखे ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ अनाथ दयाल सुख सागर सर्व दोख पहरनी मन बांचत चितवत नानक दास एक जीवा प्रभ चरनी सर्ग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साध अमृत रस कीर्तन हर गाय हिनस पूर्ण नाद रहाओ सिमर सांत महा सुख पाय मिट जाय सगल बिखाद हर हर लाभ साध संग पाय कर ले आवो लाद सब ते ऊच ऊच ते ऊचो अंत नहीं मर जाद वर्ण सा को नानक महिमा पे

हाव समझा चेत चेत मन मेरे कथी संतनया कथ कहानी लाभ लहो हर हृदय राधो छुटकै आवण जानी उदम सख सियाण तुमरी देह तनाम वखाणी सही भगत भगत से लागे नानी जो प्रपाणी सारंग महला पंजवा धनवंत नाम के बनजारे सांझी करो नाम तन खाटो गुर का शब्द विचारे रहाव छोडो कपट होए निर्वैरा सो प्रभ संग निहारे सच धन मन जो सच धन संचो कबो ना वोहारे खात खर्चित किज निकुटत ना यगंत पर

राम शरण वडभागी एक बिन कछ होर न जाने अवर उपाव त्यागी राव मन बच क्रम अराध हर हर साध संग सुख पाया अनंत विनोद कथ कथा रस साच सह सुमाया कर कृपा जो अपना किनो ताकी उत्तम बाणी साध संग नानक निस्तरिय जो राते प्रभ निर्माणी सारंग महला पंजवा जाते साधु शरण गही सांत सहज मन भयो प्रगासा पिरथा कछ न रही राहो हो कृपाल नाम देव अपना बिनती ये कहे कही आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत पायो लाभ सही जयते उपजो तही समानो साई बस यही कौ नानक परम गुरु खोयो ज्योति जोत समही सारंग महला पंजवा रसना राम को जस गाओ आन स्वाद विसार सगले पलो नाम सुआओ रहा चरण कमल बसाए हृदय एक स्यो लिवलाओ साध संगत होए निर्मल बहुर जोन नयाओ जियो प्राण आधार तेरा तून छावे थाओ सा सा समाल हर हर नानक सदबल जाओ सारंग महला पंजवा बैकुंठ गोबिंद चरण त्याओ मुक्त पदार्थ साधु संगत अमृत हर का नाओ रहाओ उत्तम कथा सुनी जय श्रमणी माया करो भगवान आवत जा दो पक पूर्ण पाये सुख विश्राम सोदत सोदत तत विचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी कौ नानक राम नाम बिन अवर सगल बिद पूरी सारंग महला पंजवा साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख ना सह चरण कमल बलिहारा रहाओ सत परमेश्वर सत साध जाने चल हर का नाओ भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ अगम अगोचर मित नहीं पाइये सगल कटवाया धार नानक वाहो वाहो कहो ता कहो जाका अंत न पार सारंग महला पंजवा गुर के चरण बसे मन मेरे पूर रहे ठाकुर सब थाई निकट बसे प्रभ ने रह रहा बंधन तो राम ले लाई संत संग बने आई जन पदार्थ भयो पुनीता इच्छा सगल पुजाई जा को कृपा करो प्रभ मेरे सो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे सारंग महला पंजवा जीवन तो गनिय हर पेखा करो कृपा प्रीतम मन मोहन फोर परम की रेखा रहाओ कहत संत के सांत न उपजत उपजत बिन विश्वास क्या सेखा प्रभु त्या ज्ञान जो चाहत ताकै मुख लागे का लेखा जा कह रास सर्व सुख स्वामी आन मान तपेखा नानक दर्स मगन मन मोयो पूर्ण अर्थ विसेखा सारंग महला पंजवा सिमरन राम को एक नाम काल मल दग्ध होए खिन पीतर कोट दान स्नान राव आन जंजार विरथासन कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभिमान सारंग महला पंजवा तूरत सोई जो तुर को लागे सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाव बाल बंच करे न जाने लाभ सो तूरत नहीं मूड़ा स्वार्थ आग सार्थ रचियो न सिमरै प्रभ रूड़ा सोई चतुर सियाणा पंड सो सूरा सो दाना साध संग जिन हर हर जप्यो नानक सो परवाना सारंग महला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन राव संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीमन हर रंग रंग भय मन लाला राम नाम रस कीमन जमीना जल स्योर जानो राम नाम संग लीवन नानक चंद संत चात्र की न्यायी हर बूंद पान सुख थीमन सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन बेताल जेता करन करावन ते सा सब बंधन जंजाल राव बिन प्रभ सेव करते अन सेवा बिरथा काटै काल जब जम आए सिंघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख लेह दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावन गीते पोहत न संसार रहा श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी है साध को आचार।

चरण कमल स्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार। नाम निधान उचरत नृसना नानक सद बलिहार। सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मथोरी सिमरत नाय श्री धर ठाकुर। मिलते अंध दुख कोरी रहाओ हर के नाम से प्रीत न लागी। अनेक भीख बोजोरी टूट दबार न लागे ताको। जोगा गुर जल जोगा गुर जल पूरी कर कृपा भगत रस दीन मन खचित प्रेम रस कोरी। नानक दास तेरी शरणाई प्रभ ने आन न होरी। सारंग महला पंजवा चितवा अवसर मन माहे। होय कतर मिलाओ संत साजन गुण गोविंद नित गाए रहा। बिन हर भजन जेते काम करिए तेते बिरथे जाहे। पूर्ण परमानंद मन मिठो तिस बिन दूसर नाहे। जब तब संयम कर्म सुख साधन तुलना कछुआ लाहे। चरण कमल नानक मन बेद्यो चरण संग समाहे। सारंग महला पंजवा मेरा प्राप्त संगे अंतर जामी। आगे कुशल पाछे खेम सुखा सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरा गुण गोपाल हर राया। बिसरण जाई निमख हृदय तय पूरे गुरु मिलाया। कर कृपा राखे दास अपने जी जंत वस जाकै। एका लिव पूर्ण परमेश्वर पव नहीं नानक ताकै। सारंग महला पंजवा जाकै राम को बल होए। सगल मनोरथ पूर्णता हो के दुख न व्यापाय कोय रहाओ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए। उदम करो दर्शन पेखन को कर्म प्राप्त होए। गुर प्रसादी दृष्टि में हारो दूसर नाही कोए। दान दे नानक अपने को चरण जी।

मान तन धन सब तुमरा स्वामी अन्न दूजी जाए जा तू रखत भी रहना तुमरा पन खाए साध संगत कै बल बल जाई बौड़ न जन्मा ताए नानक दा तेरी शरणाई जो पावे तिवै चलाए।

सके कोई मक्खी मिठे मरना जिन तो रखे ते नीण आवे तिन भव सागर सरना पौड़ी अगा मंगो चर तू धनी सचा लाखे पार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिनी सेव्या तिन सुख पाया गुरमति विचार इक नानो तो देव भावदा माया नाल प्यार गुर का सब सलाह अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत न हो वही विण सत गुर न लगे प्यार तू प्रभ सब तुत सेव दे एक ढाडी करे पुकार दे दान संतोखिया सचा नाम मिलाया आधार श्लोक महला पहला

रखे न किने न रखी लज ए न ठग ठग से जे गुर की परी पाए नान करमा बारे होर किते मुठे जाए पौड़ी पढ़िया लेखेदार लेखा मंगी है विणना वह कुड़िया रे औखा तंगी है औख टुटे राहे गलियां गलियां रोकिया सचा वे प्रभाव सब संतोखियां गए गंभीर था हाथ न लबई मोह में छोटा खाओ विण गुर कोई न छुटसी पत सेती घर जाओ नाम वखाणिया हुक्मी सागरा देंदा जानिया सलोक महला पहला पौने पानी अग्नि जियो तिनका खुशिया तिन क्या खुशिया क्या पीड़ धरती पाता लिया काशी एक दा रैन वजीर एक ना वड्डी आर जा एक मर होए जहीर एक देखा है न खूटे नाही एक सदा फिर फकीर हुक्मी साजे हुक्मी टाहे एक सह चसे मैले लख सब को नथ है नथिया बक्से तोड़े नथ वरना चेना बारा लेखे बाज लख क्यों कथिया क्यों आखिया जाप सचो सच करना कथना कार साव नानकाप कथ या कथ की कथा सुने रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान सदा सुख हो ए महला पहला अजय जरता नौ कुल बंद पूजे प्राण हो वै तिर कंद कहां त्या कहां है जान जीवत मृत रहे प्रमाण हुक्म बुझे तत् पछाण है प्रसाद गुरु ते जान हुंदा फड़ियक नानक जान ना हो ना मैं जूनी पान पौड़ी पढ़िए नाम सलाह होर बुद्धि मिथ्या बिन सचे व्यापार जन्म बिरथया यंत्र पारा वार न के नहीं पाया सब जग गर्भ गुबार तिन सच न पाया चले नाम विसार सावन तत्या बल दी अंदर तेल दुबदा कत्या आया उठी खेल फिर वत्या नानक सचे मेल सचे रत्या श्लोक महला पहला पहला मासो निमिया मास अंदर वास जियो पाए मास में मिलिया हड चम तन मास मासो बार कड्या ममा मास ग्रास मुह मास है की जीव मास है की मुह मास है का जीव मास है की मास है अंदर सास वड्डा हुआ भी आया कर लाया मास मासो ही मास उपजय मासो सबो साक सदगुर मिलिया हुक्म बुझिए तांको आवे रास आपे छुटे न छुट जाए

राय अकुल निरंजन भगदान विचै दी जय जाचै संत जन रहाव जाचै कर बिग दिसै सराय चा वैकुंठ पवन चित्रशाला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै कर लक्ष्मी कुआरी चंद सूरज दीवड़े कौतप कौतक काल बपड़ा कोटवार सुकरा श्री सुएसा राजा श्री नर हरि जाचै कर कुलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डावड़ा जिन विश्व संसार रचीले जाकै कारी सर्वावला जगत गुरु तत्सारखा ज्ञान पाखीले पापुन जाचै डंग या द्वार चित चित चितर गुप्त लिखिया